0: এই সহায়তায় ছিলেন সুদীপ্ত রায়। সকলের জন্য আজকের দিনটা খুব ভালো কাটুক। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দিতে ও ইংরেজিতে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों तथा एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों की गई। मामले की जांच जारी है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि होर्मुज में ईरान द्वारा निर्दोष नागरिकों द्वारा संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये हमले समझौते का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वहीं राउंड ऑफ 16 के अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम ब्लू।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी दूरमा भोपाली, ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पूरा नाम।

0: आएगा।
1: 29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद।

0: बहुत कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बंबई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चिंच पोकली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले।

0: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बीआर चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
1: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी।
0: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
2: कन्हैया यार, तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा है, तूने टोक दिया।
3: कहाँ जा रहे थे?
2: बगदाद
3: है?
2: अबे यार बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें।
3: वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सडा, क्या जान से मार देता है।
2: हाँ चल, चलता है
3: ना बाबा?
2: अबे चल, मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ
3: 2 रुपए इतने कहाँ से मिले?
2: अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
0: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा।

0: जगदीप ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश, ये सी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दू तब ना, एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींची है के जाते के धरवा और कस के दो दिए लबाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली, ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, उतने माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर

0: ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मेरे फिन फिनाइए तो जरा सुधाई कर दी। जटा बहुत मारा।
1: फिर क्या हुआ?
0: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
1: क्या कहा?
0: हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
2: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं। जावेद जाफरी।

जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते हैं। शाम

0: सकते हैं।
1: देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवान की डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार।
2: अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के
0: अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा।
2: ओए संग संग

0: संग संग डोले जे संग संग डोले हम पंछी एक डाल के
1: शोध आलेख और स्वर अमरकांत का प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन अब नमस्ते
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल

0: प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
1: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया,
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है। आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार।
1: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
1: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
1: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
1: जी।
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं।
1: आज
0: हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
1: जी।
0: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
1: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
1: जी।
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
1: जी।
0: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
1: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,

0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता।
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना।
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता।
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के

उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।

0: जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया

0: और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है,

0: গোষ্ঠগোপাল দাসের গাওয়া গানটির সঙ্গে শেষ করলাম আজ লোকগীতির অনুরোধের আসর। আজ ১৩ জন বন্ধুর অনুরোধ রাখতে পেরেছি, তাও দুজন বন্ধু রয়ে গেলেন বাইরে। আবার কখনো খুলে বসবো আপনাদের অনুরোধের পাতাটি। ভালো থাকবেন সকলে, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, আনন্দে থাকুন। আজ আপনারা শুনেছেন রুনা লায়লা, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ দাস, পূর্ণদাস বাউল, গোষ্ঠগোপাল দাস, স্বপ্না চক্রবর্তী, অমর পাল, রাখালদাস বাউল, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গান। ভালো থাকবেন সকলে। এখন খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। इससे पहले महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा सचिव अनिल मलिक ने पूर्ण सत्र में भाग लिया। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन भी आज शाम सम्मेलन में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बादल बरसने, तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की

0: बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रभास मंडल को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex, where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. In a joint statement, President Prabowo said, Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing the Prambanan temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: Earlier, India and Indonesia strongly condemned terrorism in all its forms and called for a decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with the international law. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia annual summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. The BRICS Women's Ministerial Meeting has commenced in Kochi. The joint statement will be adopted during the main session. Following this, the ministers representing the delegates at the meeting will visit an exhibition organized in connection with the BRICS Summit. Exhibitions highlighting India's achievements in women-led development across various sectors are being held near the venue. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satishan. Mr. Satishan said that Mr. Shah inquired about the Wayanad disaster and assured the centre's full support for relief and rehabilitation efforts. US President Donald Trump has said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict is over, adding that he didn't want to engage with Tehran. Mr. Trump's statement came during the press conference at NATO summit in the Turkish capital Ankara, following the US and Iran traded strikes after three tankers were hit by projectiles in the Strait of Hormuz. Meanwhile, the Iran has not directly claimed responsibility. Earlier, Iran has launched retaliatory strikes on US military installations following the US

0: সাহিত্যের পাতা খুলে কত কিছুই না আপনাদের শোনাতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে রইল বাকি অংশ নিয়ে আগামীকাল আসার। ভালো থাকুন সকলে, নমস্কার। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, অনুষ্ঠান শুনছেন 102.2 মেগাহার্জ FM প্রচার তরঙ্গে। এখন শুনুন বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান বিবিধ ভারতী মুম্বাই কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: পানা কি খাস বুনাই কে কারণ ইস পর ছোটে ছোটে চকোর খানে বানায়ে যাতে হ্যাঁ, জিসে খট অভি আপনে বতায়া, খট কহতে হ্যাঁ, উসকি সবসে বড়ি পহচান ভি ইহি হ্যায়। হাথ সে বুনি হোনে কে কারণ হর এক সাড়ি আপনি অলগ সুন্দরতা লিয়ে হোতি হ্যায়।
2: আর জিতনি ভি হ্যান্ডলুম ইয়া হাতকরঘা কি সাড়িয়া হ্যায় না, বাকি মে ও বড়ি প্যারি লাগতি হ্যায় দেখনে মে ভি আর পহননে মে ভি। আর ইস তরহ সে এক সাড়ি কো জব বানায়া যাতা হ্যায় তো বানানে মে ডিজাইন কে অনুসার করিব 10 দিন সে লেকর 3 মহিনে ভি লাগ জাতে হ্যায়। কই ভি হোতা না বহুত
1: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
2: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
2: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार, तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं हो।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा।

0: जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है, असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है, उसके परिवार को, कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा,
0: क्या होगा, और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो। सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है। किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
0: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है।
1: लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नीयत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देखिए बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल को धोकर एक घंटा भिगोएं, पानी को निथार कर चावल, दो चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी,
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल।
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
2: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
2: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
2: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
2: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या समझता हूँ, मैं क्या कहूँगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का जैसा उसको कहते हैं व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूँ। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है और जहाँ भी संगतियाँ दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में
2: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
2: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी, जी।
2: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
2: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
2: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नज़र आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था। उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूँ, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ। ना मैं वहाँ जाता, ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहाँ से यात्रा और कहाँ से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जा करके मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन

0: अध्ययन करने की प्रवृत्ति एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
1: जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा अनयन नयन बिन उबाने। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन उबानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन उबानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन उबानी नहीं है, नयन और उबानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
0: जी।
1: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज़ को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिन उबानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
0: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
1: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज़ उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
0: जी।
1: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूँगा।
0: आइए सुनते हैं।

0: किया इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
1: जी
2: है। एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो, बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी,
2: तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहाँ पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास, अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
2: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
2: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था, तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा, कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया, कि अब देसी

0: और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे। और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृद भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है, कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज़्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी,
1: ये हम समझ सकते हैं। जी, तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ, बिल्कुल। मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कभी भी। क्या बात, फिल्म पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात कर पाएंगे।
0: जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा। तुम

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ
0: जी, एक महान पल होंगे मुझे तो

0: लगता है आपके जीवन के ये?
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा
0: जी
1: कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है। मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी इसी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फ़ोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और को कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
0: जी।
1: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी।
1: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे
0: जी जी जी।
1: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
0: जी। बिल्कुल,
1: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसकी
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़।

0: की कोई चुनौती नहीं थी। उठाता गजा यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गजा दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए
1: जी,
0: किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल, तो रायडी साहब आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिना चलिया रे, इसको सुनना चाहूंगा।
1: बहुत सुंदर गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है, और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है, और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने, कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं, बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले।

0: चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष
1: जी,
0: में
1: जी।
0: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियाँ चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
1: जी।
0: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
1: बिल्कुल,
0: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
1: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
0: जी।
1: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
0: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में यह भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकार की भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
1: जी,
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
1: अच्छा,
0: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
0: जी। मंदाकिनी जी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी,
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरे
0: गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद है
1: बहुत सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन जी।

0: खिलाड़ी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है, वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं, वो आँखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूँ और पक्षधर हूँ कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थीं, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं
0: जी।
1: ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है, और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है। ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियाँ नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएँ, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों

0: को दिखाएं। ये दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, ये योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: जी, बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियाँ आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी मंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ज़बरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गज़लें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गज़लों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गज़ल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य या कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ। तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूँ मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
1: क्या बात
0: है, नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडे जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

कोठा होती आज तेरी छाया आशा माठेर शेषे श्यामल देशे अनेक दाड़ा दाड़ा दाड़ा आशा कोठा होती।

0: संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी मुर्शिदाबाद अनुष्ठान सुनछेन 102.2 मेगाहर्जे FM प्रचार तरंगे। এখন শুনবেন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে কীর্তন। প্রথম গানের শিল্পী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चरस से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।

0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: मुकेश की आवाज में सुनी

अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, चितचोर इस फिल्म का गीत येसुदास और हेमलता की आवाजों में। इस गीत के गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार, आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।
1: बच्चे,

दो कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

नीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए, जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ। 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी, इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीना तमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू सिंह को।

इस गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़ कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे, ढोंगी।

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन, द बर्न

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा, काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर लिया।

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का, धन दौलत।

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की, और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना है।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चाय की कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सावन, प्रेम कभी भी अग्नि परीक्षा नहीं बनना चाहिए, ना ही उसे समर्पण के प्रमाण देने पड़े कभी। क्यों है ना? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते, केवल एक प्रवाह रह जाता है बस।
1: तस्वीर तेरी दिल।